गांव में इनाम दिहा सब बिस गांव में इनाम दिनों के मैगड़ मकसद की गांव माँ मुझे तमो के लाभ या मनफाया टका वकी वकी फरदुन्ना मदनी जमिया तका जमाए तकुन्ना व्यापार इदारा तकुन कुरान सिक्के तका ए फरायत तका दिबे रीत नंग बलागने दावलतों मिकां कम हिवर दिनों के गतों ए फरायत तकुन कुरान सिक्के तका होदा कामयाबी के अगुदन कुरूं मैं इनाम नाम हुशेलने हमें कने रसूल जमहूरिया के ऑफिसों के फोन हुशेलों apply.presidency.gov.mv मी पोर्टल में दर्ज को फॉर्म होशरम के मुद्दत हमवानी देहा 26 अप्रैल 30वां बुरासत धोगे मिंदर फो देगड़े सम्मेलन के निंदा मालूमात हो द मागुलानी हाथर नोएं हाय सुमें अशें हाथरें हाथरें नंबर फोन अनुता तीने तीने तीने हाय दे नंबर फोन अ कौमी इनाम देहा 26

0: हेला नशाला हेला नशाला
1: दिवेही एफएम के कुम्मे गडियरे के फैशन विस दिवेही अमिल्ला रागे के लावे कुम्मे

0: गांव में इनाम देहा सब बिस गांव में इनाम दिन के मैं गड़ मकसद की गांव मा मुझे तमो के लाभ या मनफा टका वकी वकी फरदुन्ना मदनी जमिया तका जमाए तकुन्ना व्यापार इदारा तकुन कुरा मसक तका ए फरायत तका दिबे रीत नंग बलागने दौलतो मिकं कम हिवर दिन के गतुं ए फरायत तकुन कुरा मसक तका होदा कामयाबी के अगुदन कुरुं मे इनाम नंग होशेलेने हमे कने रसूल जमहुरिया के ऑफिस होगे फोन होशेलों apply.presidency.gov.mv me portal madarko form hosalam ga muddat hamawani deha 26 april 30 wa buraswat dhogi mindar pho degade sumnat beninda maulumat hoduma gulani haten noin haye sumen ashen hataren hatare number phone anuta tine tine tine haide haide number phone ak qaumi inam deha 26
1: दुमफत के इस्तेमाल करने की आलगों में गे हिता ले होले तक का एकांग साबंग असर करा कमें ऐम फरते उनका मुका दुमफत के इस्तेमाल करने की ले मच्छदियों सर्बी मतियों कहल कंता तक कुरी मतिवा कमें ले होले तक तेरेगा सर्बी जमावे ले होले तक हारवारा एकांग साबंग आखरों नती जाएगो तुम हार्ट अटैक कहल कंता तक कुरी मतिम के फुर्सत इतरु करा कमें मे गे तुरुं आम असुला कुं हितु गे बैठक कुरी मतिम के फुर्सत एतक गुणें इतरु करा कमें दुमफत के इस्तेमाल करने की
2: मिला मालती

0: आइडल के वाह कहूँ मैं तो खंडा लेंगे मैं तो खंडा ला फमिहार ओके मैं वाह का दक्का लमा दो फाल होते बोड़ंग हम अमी फेंडनी मैं कावल लवतंग आदि इंगे कावल लवतंग का शाओगेरी कंग हुन्नडी है नूनी मैं मी हुन्ना कामदनी है कावल लव बोड़ंग की मा
1: कामदन कावल लव
0: मिताल ऐह वी मत कावल लव किया
1: नो ऐह वी में नो ऐ दें किया लाही बात ही किया नहीं हम मी हुन्ना कामुदातिया सेक्को दें हम अमिसाय का बाइफार में लावा इधर हमारा रीति रीति वेदान वेदान कुदले का मिहार वाला कुरी के लावे सो हमारा रीति वेदान वो देव किया लाही वेदान इतारा फाम रीति वाला रीति वाला ना काबो एंगा दादान दो इतारा हम काबो एंगा दादान एगोत ऐति दाने एक माँबड़ वाले क्या यह कॉम्प्लिकेटेड कमेंट नोड़ना नहीं का हम एगोत एविस्टुमो का हम हाथा है ना
0: देन ते पुनी तक्यावन हफलाता होगा स्वर्ग की नंग हम मी लव किया वाले एम में बड़ा रिक्वेस्ट रहने नहीं कोल्ला वे किया
1: एके दुवस तो रहेगी ना वाला
0: मैं हर मिसाल का मी ए कं इंतजाम करा फरार तुम
1: फारे गम फहारो बुना बाय फहारो में हम बुना ने मैं मी वैने लव एक किया दिच्छे मी वैने लव एक किया दिच्छे कहाँ ये वारा माधु इंस्टेंस है तो बुना आम को हम फादी हम इन देंगे एमएमएस किया गेंगुले ने वेडिंग सेट हो तो वेडिंग सेट अंगे ना ने देंगे वेडिंग सेट वो आम को हम अब दिस किया देन बाय देंगे आलर्ज में ही इंक्लूड वाला वाला वे सुनना मैं हर मिसाय का मैं हर कॉम में को तेज मजबूर और मैं हर सही आ रखे
0: ओ हिंदी
1: ऐसा हिंदी किया अब दोस किया हम हिंदी लव आज हम अब दोस किया हिंदी लव सिगरेट सी दीवे हम टीम बैंड दुबारा अब दोस
0: इंग्रेज़ी लव का इम्मेगिना किया निकल दो
1: इंग्रेज़ तो वारब पैर दो होना नहीं इंग्रेज़ लव के हम इंग्रेज़ी एम में रोमांटिक है एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू ब्रायन एडम्स एक है लव देन नथिंग्स गोना चेंज माय लव फॉर यू देन ऑब्वियसली एम में ऑब्वियस अने वंडरफुल टुनाइट मी द वे यू लुक टुनाइट ते मे आरम फाहोगे लव सुनना जॉर्जिया Let me up and know you like a love song. And it depends.
0: No, we're wearing a mashur lavatati.
1: Obviously, wedding a kiyan is a kiyan.

0: ओएसटी मिबयंग मिहफ्ताका मिहोवाले फिल्मो लायलागे लवें अडीविके मिदिए अर्गना एकीगे तिबे फुं हेदकुरी वगुतुकुला वरबोडा शुकुरदा कुरमुं मिहा हिसाबुं मिहफ्तागे एमएफएस शो निम्मालाना दिवेहि फिल्मो लम्हा पाय ररशुगवेस मिहार एबदक्का आदि टीमा गोडिगें ररशुग दक्कम बेनुवा फरातकवेस मि फुर्सतवनी हुळवालाफा एहेमा एरशिक्का अळवाकमवानामा फिल्मो बलालंदाति माल सरहद्दुग उळे फरातकुं ओलिंपस सिनेमाया दिवेहि फिल्मो लम्हा बलालंदाति आदि सोशल मीडिया इन फालियो सर्च को फालियो के लवतक तरहीब देवाति अबद सर्मेंगे फन्नानुन तरहीब देति एकमको एमे मुहिमकमकी अमिल नफसर रक्का तेरवुं आदि वशागें तिबि फरातकं अलालुं अर्गन मी आशिदा अन्न हफ्तागे सम मिवगुतु तिबेफना बद्दललुंगे उम्मीदुग मिहा हिसाबं अर्गन बकेलाना अस्सलाम अलैकुम
1: एमएफएस
2: मुनफुई फिलोंगे दायरा एमे ताजा